कोल हमने चमक दी ठीक हुआ के सीखो कोला में सीखोड़ा चमक दी कोला में